गौ ब्राह्मण को कुरलाव को व्रतन न जाय। ज्योति टिका तेज माली तन में जगवाई, अंतर पूजा बड़े कि बस निम्बुल पपाई चोगी लिपखंडा नाम ले जाता है। मान खाने करे निवास।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद, बड़ पागी गुर सतगुर पाया गुण गावत परमानल, जप मन सतनाम सत सतनाम।

सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होइए। जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, जय अपार जगत कीनी, बड़ पागी हर जपना, बड़ पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

आख्या फरमान दे आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है ये आत्म रस दी खुराक है आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

0: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह, सच्ची तेरी को सच्चे भाषा, नार सच है सच्ची जो मर्ज में सो कज कर तुम्हारा पहला वडी उड़े या वड़ा ना वडी उड़े सच ने आओ वडी उड़े या निचल थाओ वडी उड़े जाने आना वडी उड़े बुझ सपाओ
1: वडी उड़े जा पूछना दार वडी उड़े जा पे आप नानका तक थे जाए की तक न सर बजाओ
2: महला दूजा जब सच्चे किया कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना कुछ मालूम।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनवार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ मिया कूड़ बीबी का पोएगार कूड़ कूड़े ने

शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी सतगुल संतोह का धर्म गिरथवाओ, तेरे तेरा जित का जोर रखे रथवाओ, द्वापर रथ तपे का सत गिरथवाओ।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भगत रविदास जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देन वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। ये सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है उपाय है, किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंद्र साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदिया ही केंद्र ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन दी शुरुआत हो जाती है। साध के संग सदा प्रफुल्ले साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप कर दी है ओ ब्लूम कर दी है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन इह जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहानां दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हुंदा सी। उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंद तह जाए। जेड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंद जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी के शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखण की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सटे, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनों सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्हां नूं भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सिखदे हैं उत्साह वधदा है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनदा है।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारिया चीजा जो प्यारियां लगदिया स्वादलियां लगदियां, कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हों का रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर में ही वह भोगना पै गया, भोगं त रोगं, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगं त रोगं, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वह खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहिंदे हन जे 100 वरिया मिठा खाए, कहिंदे हन

जितने भी शरीर वे रस हन उतने ही दुख लगते। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दिती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लैंदे हां कि साडी सोशल लाइफ भी है, असीं ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन, इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुणिया, ठीक है ना। गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, अते इसनूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होवे। गुरु बाबा जी दसदे हन कि ए ग्रिस्ती, जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने दे नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी, कंट्रोल करन दी, अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड। वो कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी,

है गृहस्थी, इसके अर्थ सुनो। सो गृही जो निग्रह करे, कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स दे उते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उते काबू पाए, इन्हों उते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वह उन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआ वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाने दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नू घटावे, अपनी नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसने खरीदना ही है। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनो ही, अपने बिल्स पूरे करनो ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते काम करता है, अपनियां इंद्रियां नू कंट्रोल करता है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओह ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जब तप संजम भिख्या करे, इस गल दी ओह वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे
ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਉਸਨੂੰ।

फिर सच्चे ते सदा सुहागन। कहिंदे इह काया जदों तक फिर इस दे नाल है ते सुहागन है, अते जदों तक सुहागन है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल पति नाल। पर कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विछोड़ दोगे, इस दे पिर तो दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे लै गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सानेड़े देन दी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इस दी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, उस पति नू मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नू याद करदी है, अखां च इस दे अथरू हन, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, किवें अपने प्यारे नू वापस मिलां, क्योंकि इस नू भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैन परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिलां प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा, क्यों पाईए प्रपारे, ना मैनू रस्ते दा पता है, ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। ते कहिंदे हन इस जो सिमली नू देण दा अर्थ यह है कि यह जो शरीर है असीं इसनू यह समझना है कि यह रब दी औरत है और इस दा पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नू इस दे पति तो अकाल पुरख वाहिगुरू तो दूर तरेगा तो उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नू उसके पति तो विछोड़ दिता जाए तो होर की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वह मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप जी की सेवा दे विच रख्या है कि ए अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु की ए पत्नी है, ए उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिदा है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब की कामणी है कि वह वस्तुआं देईए जिहड़ियां इस नू वाहिगुरु तो दूर ले जाण, वह वस्तुआं देईए जो इस नू गंदगी दे नाल भर देण, वह वस्तुआं देईए जो इसकी बुद्धि नू भ्रिष्ट कर देण, वह वस्तुआं देईए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लियाण, इस नू असीं बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्थे कीता जाएगा। फिर साडा फर्ज बनता है ये रब की औरत है, इस नू जिस तरह रब ने बनाया उसे तरह ही असीं रख संवार के श्रृंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखी, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करन दी सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि डिजाइन जो इसका है जिस तरह भी उसने चाहा है उसने आप बनाया है, ये उसकी औरत, अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए ताकि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वह वातावरण की है, वह है सत्संग, वद तो वद सत्संग हो, पर जितना असी इस नू सत्संग तो दूर ले जाएंगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नू भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नू ही भुल जाए पति नू ही भुल जाए उसका हशर की हुंदा है, बहुत भयानक हशर हुंदा है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं एक काया ये शरीर जो तुहाडे पास है तुसी नहीं समझे ये वस्तु की है, ये रब दी
कामणी है, ये रब दी औरत है। बस आज इतना ही, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो विचार है वो डाइजेस्ट होएगी, साडे अंदर बैठेगी, असी उसनू कंज्यूम कर सकांगे ते बाद दे विच रिफ्लेक्ट कर सकांगे। अज दे कीर्तन दे नुक्ते मैं वापस दोहरा दिना। गुरु महाराज जी ने यह आख्या है कि मेरे अंदर हुण अवेयरनेस आ गई है कि कोई मैनू मिल जाए जिहड़ा मेरी इस देही नू वापस फिर नाल मिला दे, सफली कर दे, इसनू वापस सुहागन बना दे, कहिंदे मैं ये उसनू ही सौंप देनी चाहना हूं। ये तू इसका मालक हो, तेनू दे दी, तेनू वेच दी, प्रोवाइडेड के तू ये गारंटी कर कि तू मेनू मेरे पिर नाल मिला देगा, मेरा जीवन सफल कर देगा। ए तन वेची बै करी जे को लै बिकाए, क्योंकि नानक तम ना आवे जित तन ना ही सच्चा ना हो। जिस तन दे विच सच्चा ना नहीं है उस तन ने किसे कम नहीं आना, उस तन ने विकार जाना है। एक पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट आप जी की सेवा च यह रखिया है कि गृहस्थी कौन है। गृहस्थी ओ नहीं जो दुनिया के स्वादां दे विच खोया पिया है, गृहस्थी ओ है जिहड़ा गृहस्थ दे विच रहिंदिया होया अपनियां इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते, टेस्ट दे उत्ते, इन्हां दीआं कमजोरियां दे उत्ते कहिंदे मास्टरी अचीव करदा है, कंट्रोल करदा है अते इन्हां नूं जितदा है। अते जप तप संजम भिख्या करे, इक भिख्या इक्को ही जो ओह दान वाहिगुरु तों मंगदा है कि मैनूं जप दे अते तप दे, तपस्या दे, ताकि मैं मेहनत कर सकूं। पुन दान का करे शरीर, अपने शरीर नूं पुन दान दा ही एक रूप बना लवे, बस कि इस शरीर दे नाल उसने पुन दान तो पाव है सेवा अते परोपकार अते दूसरियां दे कम आना। अगर एक शरीर दूसरियां दे कम नहीं आता तो यह बेकार है। यह नुकता। और तीसरा नुकता जो 13 नुकते शुरू किए हुए हैं, अज उन्हां 13 नुक्तियां दे विचों तीसरा नुक्ता आप जी की सेवा च यह रखिया है कि यह अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, यह उसकी औरत है, इसनू उस दे नालों अगर विछोड़ दोगे यह कुमला जाएगी, यह मर जाएगी, यह रोएगी, यह गमगीन होएगी, यह उदास होएगी। फूल चुक दी खिमा। आओ एक बार इस पंक्ति में फिर गाओ।